ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय

की धरती पे आकर एक छोटी सी नगरिया, एक अनजान सी नगरिया में देखिए साई ने क्या क्या किया है।